लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मिली से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी चाहे ज्यादा लंबी ना हो, पर जितनी भी हो बेहतर हो, जिसमें ईर्ष्या द्वेष वैर भाव ना हो, सिर्फ प्यार ही प्यार हो। आइए सुनते हैं सच्चाई फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म कर्म से।

दोस्तों, हम चाहते हैं कि समय धीरे धीरे चले और यहीं पर थम जाए और हम आपके साथ बातें करते रहें, पर ऐसा संभव नहीं है क्योंकि समय तो अपनी ही गति से चलता है और हमें भी अब जाना होगा। अब भोर सुहानी से अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

0: तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research

0: summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India.
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया. ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है. इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है.

0: ವಿಂಟನೇ ಉಂಡಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ 101.9 ಆರ್ ಎಂಬುದು ಜೀವಿತಂ ರಂಗಲಮಯಂ ವಿತ್ ಆರ್ ಜೆ ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश.
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है.
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे. अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें.

गुड मॉर्निंग हैदराबाद, उम्मीद है कि आपकी नींद पूरी हुई है और सपने बड़े ही सुंदर थे और अब उठ के उन्हें सच करने का वक्त आ गया है। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे निधि और आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब। लुकिंग फॉरवर्ड आज हम बहुत सारे गाने सुनेंगे और ढेर सारे बातें करेंगे, सो स्टे राइट हियर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग टू रेनबो FM 101.9।

नमस्ते, हेलो, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। आज की सुबह थोड़ी धीमी है, थोड़ी मीठी है, बिल्कुल हमारी प्लेलिस्ट की तरह। वेल, वी वर टॉकिंग अबाउट पैशन। तो दोस्तों, दुनिया क्या चाहती है आपसे वो छोड़ो, आप क्या चाहते हो वो करो। डूइंग वॉट यू लव डजंट मीन कि आप अपना स्टेबल जॉब क्विट कर दो। इट मीन्स अपना पैशन के टूवर्ड्स एक्सपेरिमेंटिंग करना स्टार्ट करो। इफ देर इज ग्रोथ स्टेबिलिटी, देन डिसाइड करो आगे बढ़ने के बारे में। अगर ग्रोथ नहीं है तो जस्ट डू इट टू कीप योर इनर चाइल्ड हैप्पी। वेल लिसनर्स, इट्स 10:20 AM इन द स्टूडियो क्लॉक एंड यू आर लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब ऑन रेनबो FM 101.9 विथ मी योर RJ निधि एंड आई विल बी राइट बैक आफ्टर दीज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स लाइंड अप फॉर यू ऑल।

So that was Attention by Charlie Puth. And you are listening to Namaste Hello Adab on Rainbow FM 101.9 with me, your RJ Nidhi. I am right here with some more chit chat on choosing your passion. अभी का हालात ऐसा है कि बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो करियर के टूवर्ड्स ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि वी डोंट हैव टू चूज जस्ट वन वर्क और डू वन फुल टाइम जॉब एट अ सिंगल कंपनी. इंस्टेड हम डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकते हैं दैट विल मेक आर आइडेंटिटी एज वेल एज मेक अस हैप्पी. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पोर्टफोलियो करियर्स दीज डेज इज़ वी सी बहुत सारे लोग अपने जॉब्स के साथ साथ इन्फ्लुएंसर्स या कॉन्टेंट क्रिएटर्स बन रहे हैं. आई नो मल्टीटास्किंग करना पड़ता है दो या तीन करियर्स को एक साथ निभाने में, बट थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लगाने से क्या ही हो रहा है. इनफैक्ट हम सब खुश रह पाएंगे कि हम अर्न भी कर रहे हैं और हमें जो खुशी देता है वो भी कर रहे हैं. एट द एंड द गोल इज़ टू हैव नो रिग्रेट्स, इज़न्ट इट? स्टूडियो क्लॉक में इट्स 10:30 AM एंड हम जल्दी वापस जुड़ेंगे रेनबो FM 101.9 पर, और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे निधि.

हेलो हैदराबाद, सुबह हसीन है, काम बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और मैं हूँ आपकी आरजे निधि। और

आप मेरे साथ जुड़ गए हो। नमस्ते, हेलो, आदाब पे। यू नो समथिंग, हम सब आज के दिन यानी 19 मई के दिन वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाते हैं हर साल। वेल, इस दिन का अहमियत यह है कि दिस डे इज़ ऑब्जर्व टू प्रमोट एथिकल बिहेवियर, स्पोर्ट्समैनशिप एंड द कोर वैल्यूज ऑफ फेयर प्ले बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। ये ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा प्रोक्लेम हुआ था एंड इंटरनेशनल फेयर प्ले कमिटी इसे फॉलो करता है। दिस डे प्रमोट्स द एनकरेजमेंट of honesty, equality, respect in all forms of athletic competition. If you guys noticed, we also have the Fair Play Award in the IPL and currently Punjab Kings Fair Play mein table top kar raha hai and it is followed by CSK. Aap sun rahe ho Namaste Hello Adab with me your RJ Nidhi and we will continue to have lots of baate. Keep smiling and keep listening to Rainbow FM 101.9.

गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। होप यू आर चिलिंग। सच में, क्योंकि बाहर गर्मी की हवा से तो हम तंदूर बन चुके हैं। दिस इज योर होस्ट आरजे भूमिश्री और आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब ऑन एफएम रेनबो 101.9। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड, द इंडियन समर लाइफस्टाइल। लेट्स बी हॉनेस्ट, गर्मी आ रही है। गर्मी ने हम पे अटैक कर दिया है, घर पे हो या अपने काम से बाहर। गर्मी सबकी बराबरी ले रही है। सुबह के 9 बजे यू स्टेप आउट आफ्टर अ फ्रेश शावर लुकिंग लाइक अ हीरो, और 20 मिनट में यू लुक लाइक यू जस्ट स्वैम अक्रॉस द इंडियन

0: काम से बाहर। गर्मी सबकी बराबरी ले रही है। सुबह के 9 बजे यू स्टेप आउट आफ्टर अ फ्रेश शावर लुकिंग लाइक अ हीरो और 20 मिनट में यू लुक लाइक यू जस्ट स्वैम अक्रॉस द इंडियन ओशन विथ योर क्लोथ्स ऑन। सारी पर्सनालिटी पानी में बह जाती है बॉस। आपकी समर स्ट्रगल्स कैसी होती है हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। अंटिल देन लेट्स किक ऑफ विथ अ ट्रैक दैट मैचेस द हीट इनसाइड अवर हार्ट्स बट होपफुली कूल्स डाउन योर मूड।
1: ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేటుతో వృద్ధులకు 7.10% మరియు వయో వృద్ధులకు అదనంగా 0.25% వడ్డీ రేటు.
2: మరిన్ని వివరాలకు మీ దగ్గరలో ఉన్న యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాంచ్ను సంప్రదించండి.

0: वेलकम बैक, मैं हूँ आपकी होस्ट आरजी भूमिश्री और आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब ऑन एफएम रेनबो 101.9। वैसे समर लाइफस्टाइल इन इंडिया इज डिफाइंड बाय टू मेजर थिंग्स, एसी रिमोट डायनामिक्स और लिक्विड कंजप्शन। लेट्स टॉक अबाउट द एसी फर्स्ट। एवरी इंडियन हाउस होल्ड हैज़ एन एसी डिक्टेटर, ऑफकोर्स इट्स पिताजी। उनका अलग ही चश्मा होता है। इफ द एसी इज़ एट 24 डिग्रीज, वो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल देखने लगते हैं। अगर वही एसी 18 पे आ गया, यार पापा तो ऐसे नज़र से देखते हैं कि हम कुछ फाइनेंशियल क्राइम कर दिया हो। घर को शिमला बनाना है क्या? वॉट अबाउट द लाइफ स्टाइल शिफ्ट इन अवर डाइट फूड? सुनो, खाना तो सेकेंडरी है। राइट नाउ वी आर सर्वाइविंग ऑन स्ट्रिक्ट लिक्विड करेंसी, नींबू पानी, छास, आम पन्ना एंड द अल्टीमेट किंग ऑफ इंडियन सामोस, आमरस। आपको याद है वो पुरानी एड जहाँ सूरज स्ट्रॉ के साथ हमारा पूरी एनर्जी पी जाते थे? भाई वो कार्टून नहीं था, वो डॉक्यूमेंट्री थी। डैट इज एग्जैक्टली हाउ स्टेपिंग आउट एट 2 PM फील्स लाइक। इन्हीं यादों के साथ मूविंग ऑन टू सम फ्रेश म्यूजिक टू कीप द वाइब्स ब्रीजी।
1: Shining in the setting sun like a pearl upon the earth.

0: हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हो रेनबो FM 101.9 पर। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे निधि और आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब। मेरे साथ आज आरजे भूमिश्री भी है, जैसे आपसे वो बात कर रही थी, और उसके पास ढेर सारे बातें हैं और ढेर सारे गाने हैं।
1: जी निधि, क्या तुम्हें पता है समर्स का बिगेस्ट स्कैम क्या है?
0: क्या है समर्स का बिगेस्ट स्कैम?
1: द वेकेशन प्लान्स। और क्या?
0: वो तो होता ही नहीं है, बस प्लान करते हैं हम लोग।
1: हाँ वही, जहाँ भी देखो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कुछ भी खोलो तो आधी जनता इज पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ माउंटेन्स विद कैप्शंस टेक मी बैक बाय। तुम्हें तो कोई भी ले जाएगा, बट वॉट अबाउट रेस्ट ऑफ अस जो अभी कूलर के सामने चिपके हो? एंड ऑनेस्टली, प्लानिंग अ ट्रिप टू अ हिल स्टेशन राइट नाउ इज एक्सट्रीम स्पोर्ट। यू थिंक यू विल फाइंड पीस इन शिमला और मनाली? वहाँ पूरे इंडिया के ट्रैफिक का जाम मिला होता है। यू एंड अप लुकिंग एट बम्पर ऑफ अनदर कार फॉर 4 आवर्स इन 35 डिग्रीज माउंटेन हीट। इससे अच्छा तो घर पे दही चावल या कढ़ी चावल खाओ, कर्टेंस को क्लोज करो और सो जाओ। दैट इज द रियल लग्जरी लाइफ स्टाइल। लेट्स गेट बैक टू द प्ले लिस्ट डिजाइन टू लोअर योर बॉडी टेम्परेचर एटलीस्ट बाई 2 डिग्रीज।

0: And we are in the final stretch of our special summer program. And the time is 11:39. आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब. मैं हूँ आपकी होस्ट आरजे भूमिश्री. तो यह आपके आरजे अप्रूव्ड समर लिस्ट को एक बार चेक कर लेंगे. पहला है वाटर बॉटल, वो आपकी छाया है. घर से बाहर तो पानी का बॉटल साथ कभी ना छोड़ना. द सनस्क्रीन रिचुअल, गोरी त्वचा हो या स्वानली त्वचा, पुट द सनस्क्रीन ऑन. डोंट लुक इट हैज सनस्केयर, लुक इट हैज अ शील्ड अगेंस्ट द यूनिवर्स. कॉटन इज द किंग. पॉलिस्टर टाइट फिट्स भूल कर एम्ब्रेस द लूज लेनिन एंड नरम सी सूती कपड़े. लुक लाइक अ गुरु, फील लाइक अ किंग. कीप इट कूल, डोंट लेट द रोड रेज गेट यू. अब सबको गर्मी लग रही है, थोड़ा काम डाउन हो जाइए. स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ एंड रिमेंबर, मानसून दूर नहीं है, बस एक महीना और. दिस इज योर होस्ट आरजे भूमि और आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब ऑन FM रेनबो 101.9.
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा.

हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हो FM रेनबो 101.9। तो चलिए और थोड़े समर टिप्स सुनिएगा। अगर दोस्तों के साथ बातें करनी है तो अपनी इंग्लिश थोड़ी स्पाइसी बनाओ, अगली बार वेरी हॉट नहीं। ट्राई सेइंग इट्स एब्सोल्यूटली स्क्रॉचिंग टुडे, थोड़ा इम्प्रेसिव लगता है बॉस। चलो अभी के लिए इतना ही, अगले ब्रेक के बाद लेकर आता हूँ आपके फेवरेट सुपरहिट ट्रैक्स। अब सुनते रहिए, स्टे कूल स्टे हाइड्रेटेड।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
1: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit in Oslo today, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defence, sustainability and trade. We have more from our correspondent.
3: This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc currently stands at $19 billion. This summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region. It will also provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of this summit. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo.
2: Earlier, Prime Minister Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement. The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. India and Sweden have emphasized that cooperation will define the pathway to shared prosperity and a sustainable future at this moment of global uncertainty. In an article written by Prime Minister Narendra Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, it was highlighted that at a time of global uncertainty, energy insecurity and economic divisions, the world must choose between working alone or strengthening

गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो चुका है डियर लिसनर्स. इट्स 12:13 PM इन द स्टूडियो क्लॉक एंड यू आर लिसनिंग टू रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि. और हम अपना फेवरेट शो नमस्ते हेलो आदाब पे आ चुके हैं. वेल दैट वॉज ताकी ताकी एंड अभी आगे हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे. मैं जल्दी आपसे वापस जुड़ जाऊँगी.

101.9। वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हो नमस्ते हेलो आदाब ऑन रेनबो एफएम 101.9 विथ मी योर आरजे निधि। जैसे हम बात कर रहे थे अबाउट वर्ल्ड फेयर प्ले डे अर्लियर, स्पोर्ट्समैनशिप एंड सब के बारे में, आई हैव मोर टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स बिकॉज दिस वीक इज अ स्पेशल वीक फॉर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट्स इन तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट ये वीक को यानी 18th मई से लेकर 23rd मई तक को यूथ एंड स्पोर्ट्स वीक घोषित किया है, packed with local events, sports drives and youth engagement programs across the state. This is a part of 99-day Praja Palana Pragati Pranalika program. This week focuses on physical fitness, youth empowerment, leadership development and career opportunities. सुनते रहिए रेनबो एफ एम 101.9 और साथ ही मुस्कुराते रहिए, मैं हूँ आपकी आरजे निधि।

0: ಮನೋಜನರಂಜನೆ.
1: Hello dear listeners, it's 12:42 p.m. in the studio clock and you're listening to Namaste Hello Adab on Rainbow FM 101.9 with me your RJ Nidhi. चलिए अब एक छोटा सा स्टोरी टाइम हो जाए. सो मैं लास्ट वीक श्री शैलम को वाया रोड निकली थी एंड घर के पास मेरे को लगभग 4 hours 50 minutes का ड्राइव दिखा रहा था मैप्स पे. एंड देन अराउंड शमशाबाद के पास जाते ही मैप्स में रोड क्लोजर दिखा रहा था, जिसके वजह से मेरा ड्राइव हो गया था 7 hours long. जिस हिसाब से आई वुड बी रीचिंग श्री शैलम अराउंड 1 AM एंड वी वेर ऑल टेंस्ड कि इतना लॉन्ग क्यू पर हम बिना मैप के डाइवर्शंस फॉलो किए रोड पे डायरेक्शन बोर्ड्स को फॉलो करते हुए गए थे. वी थॉट कि विदाउट इन्फॉर्मेशन नेशनल हाईवे बंद नहीं करेंगे. हम थोड़ा करेज जता के आगे बढ़ते रहे एंड गेस व्हाट, हम बिना रोड क्लोजर का श्रीशैलम 5 hours में पहुंच गए. सो डियर लिसनर्स, रोड ट्रिप पे अगर लंबा रास्ता जा रहे हो तो मैप्स के साथ साथ प्लीज़ डू फॉलो हाईवे पे डायरेक्शन बोर्ड्स एंड मेक श्योर यू आर नॉट गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम द हाईवेज. कीप लिसनिंग टू रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि.

वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हो रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि। अभी कुछ ही समय में हमारा हेलो रेनबो शुरू होने वाला है और मैं आपको आपका टॉपिक भी बताने वाली हूँ। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 04023230030, 04023230428210, 04029704715 पे। हम आपका इंतज़ार करेंगे और टॉपिक मैं जल्दी बताऊंगी। तब तक सुनते रहिए नमस्ते हेलो आदाब रेनबो FM 101.9 पे।

वो घड़ी आ गई है जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। हेलो रेनबो पे आप पहुंच गए हो। मैं हूँ आपकी आरजे निधि और आज का हमारा टॉपिक है, हम सब अवेयर है अबाउट द ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। वहाँ जो वॉर हो रहा है उसके वजह से ग्लोबली फ्यूल का सप्लाई मुश्किल हो चुका है एंड कॉस्ट इम्पोर्ट कॉस्ट टू स्काई रॉकेट। यही कॉन्टेक्स्ट में पीएम मोदी जी ने फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस करने का नीड ऑफ द आर घोषित किया है टू सेव फॉरेन एक्सचेंज एंड शील्ड आर इकोनॉमी। तो दोस्तों आज हमारा फोन इन का टॉपिक इसी चीज़ से रिलेटेड है। क्या आप फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस करने वाली बात को सीरियसली अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर रहे हो? अगर हाँ तो आप क्या ऑल्टरनेटिव्स चूज कर रहे हो? आपका क्या विचार है इस बात पर आप हमें बता सकते हैं 0402323 0030 0402323 4821 और 0402970471 पे। हम आपका इंतज़ार

जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे अबाउट फ्यूल कंजम्पशन एज सेड बाय मोदी जी, उसे रिड्यूस करना चाहिए। मैं पर्सनली एक 2 वीक्स बैक पेट्रोल भराने गई थी एंड आई हैड टू वेट फॉर लाइक 1 किलोमीटर मेरे तक लाइन आने के लिए, एंड देर वर सेवरल पेट्रोल बंक्स वेयर पेट्रोल वॉज नॉट इवन अवेलेबल। तो हमें बिना पता चले ही हम है पेट्रोल क्राइसिस में, और जैसे हमें पता है पेट्रोल का रेट्स इंक्रीज हो गए हैं। मई 15th के दिन 3.36 रुपीज़ टू 3.43 रुपीज़ पर लीटर तक का हाइक आ चुका है। आप हमें, आप पेट्रोल को कैसा, कंजम्पशन को कैसा रिड्यूस कर रहे हो, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर रहे हो, और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें बता सकते हैं। हमारे नंबर्स पर 0402323003, 0402323484821, 0402

0: हेलो डियर लिसनर्स, तो हमारे साथ अभी एक लिसनर जुड़ गए हैं हमें कॉल कर। हेलो,
1: हरिओम,
0: हरिओम सर।
1: मैं विलास पेनुरकर नल्लाकुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ। हाँ
0: जी सर, आज का टॉपिक सुने सर आप?
1: जी, मैंने सुना है। हाँ
0: जी, तो आपके क्या विचार है सर?
1: जी, मेरे विचार इस प्रकार के हैं कि जब भी हम बाहर निकलते हैं किसी काम के कारण, तो
0: जी
1: हमको एक सूची बना लेनी है कि हमको बाहर से क्या क्या खरीदना है, क्या क्या काम करना है। तो
0: बिल्कुल
1: एक
0: सर,
1: ही बार जब हम बाहर निकलेंगे तो सारे काम करके आ जाएंगे, तो जिसके कारण एक तो हमारे समय की भी बचत होगी और साथ साथ पेट्रोल की भी बचत होगी। जी,
0: वेरी ट्रू सर, बहुत हेल्पफुल टिप था ये तो।
1: और एक
0: जी
1: बात ये है इसमें कि होता ये है कि
0: जी
1: हम एक काम करके आ जाते हैं, घर
0: जी
1: पर आने के बाद में
0: जी
1: घर से कहा जाता है पत्नी के द्वारा, अरे दही तो लाने का रह गया है,
0: बिल्कुल
1: या नहीं तो वहां से वो कपड़े लाने के थे वो रह गए हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर से स्कूटर या हमारा चार पहिया वाहन निकालते हैं, फिर से जाते हैं। तो
0: सही है
1: इसमें समय भी बर्बाद होता है।

0: और पेट्रोल भी ज्यादा जलता है। ये
1: वेरी ट्रू
0: एक
1: सर,
0: कारण, मतलब ये एक काम है जिससे हम पेट्रोल की बचत कर सकते हैं। और एक बात ये है कि सिग्नल पर आजकल हमको एक एक दो दो मिनट रुकना पड़ता है।
1: हाँ जी, तब गाड़ी ऑफ
0: तो
1: करना चाहिए, है ना?
0: हाँ, तो अधिकतर हम क्या करते हैं कि गाड़ी को बंद नहीं करते। और आजकल तो क्या है कि धूप है जिसके कारण हमारा एसी चालू रहता है, तो
1: सही है,
0: गाड़ी बंद करेंगे तो एसी बंद हो जाता है, जिसके कारण हम गाड़ी को चालू ही रखते हैं।
1: वेरी ट्रू सर,
0: लेकिन एक दो मिनट गाड़ी बंद करेंगे तो विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले एसी लगा हुआ रहता है तो एक दो मिनट तो वो ठंडा ऐसे ही रहता है
1: ठंडा
0: गाड़ी।
1: रहता है, सही है, हाँ
0: तो सिग्नल पर गाड़ी हम अवश्य बंद करेंगे। और आजकल तो क्या है कि गाड़ी जब आप बंद करते हैं, बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अभी कुछ नई गाड़ियां जो
1: हाँ
0: चार,
1: ऑटोमेटिक बंद हो जाती है
0: हाँ, वो
1: सिग्नल
0: अपने आप
1: पे,
0: बंद
1: ब्रेक
0: हो
1: पे
0: जाती
1: पावर
0: है। हाँ,
1: रखने से। जी,
0: और एक बात ये बताना चाहूंगा कि हमको कहीं पास में जाना हो तो हम पैदल जाना ही ज्यादा अच्छा है, हमारे
1: बिल्कुल
0: स्वास्थ्य के दृष्टि से और पेट्रोल को बचाने के दृष्टि से, दोनों भी
1: जी
0: दृष्टि से पैदल
1: जी
0: जाना अच्छा है। और थोड़ा सा दूर अगर से जाना हो तो हमको साइकिल का भी प्रयोग करना आवश्यक है। साइकिल
1: जी बिल्कुल, साइकिल भी
0: का
1: बहुत
0: प्रयोग
1: अच्छा
0: करेंगे,
1: ऑप्शन है।
0: जी, साइकिल का प्रयोग इसलिए करेंगे कि साइकिल चलाने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और साथ साथ पेट्रोल की भी बचत होगी।
1: जी
0: और अंतिम बार एक बात मैं बताना चाहूंगा कि
1: जी सर
0: हम जिस सदनिका के समूह में रहते हैं,
1: जी
0: यानी कि कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो वहां पर क्या है कि कोई व्यक्ति जो हमारे कॉम्प्लेक्स में से दो तीन व्यक्तियों को जानता है, वो
1: जी
0: विवाह का निमंत्रण देने आता है।
1: सही
0: तो
1: है,
0: मुझे मुझे पता होता है कि भाई अन्य दो तीन परिवारों को, दो परिवारों को भी निमंत्रित किया गया है। तो मैं उस दिन, मैं क्या करता हूँ, उन दो परिवारों से कहता हूँ कि मैं उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए जाने वाला हूँ, आप भी मेरे साथ में आ सकते हो।
1: कारपूलिंग कर सकते हैं
0: हाँ, तो
1: जी।
0: क्या होता है, एक तो पेट्रोल की बचत हो जाती है और अनावश्यक वो भी अलग गाड़ी में आएंगे, दूसरा परिवार अलग गाड़ी में आएगा।
1: जी
0: तो
1: सर, वो
0: ये,
1: सही है,
0: हाँ, तो ये कुछ बातें हैं जिसका हम थोड़ा सा ध्यान अगर से देंगे इन बातों पर, हम निश्चित रूप से पेट्रोल की बचत कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
1: थैंक यू सर, आप बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें बोले हैं आज हमारे लिसनर्स के लिए, थैंक यू वेरी मच सर।
0: आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ।
1: नहीं नहीं सर, थैंक यू सर।
0: आपका शुभ नाम जान सकता हूँ?
1: निधि सर, निधि
0: दीदी।
1: जी,
0: अच्छा जी, दीदी जी, आपका, आप नए आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर,
0: नमस्ते। जी
1: नमस्ते। चलिए, और एक कॉलर भी इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो,
2: हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब
1: गुड आफ्टरनून सर।
2: जी। मैं शेर खान बोल रहा हूँ, तालाब कट्टा अमन नगर से
1: जी सर, आप आज का टॉपिक
2: जी।
1: सुने हो सर?
2: हाँ जी, सुना हूँ, लेकिन
1: जी
2: पहले मैं आपको, सभी भाई बहनों को, दोस्तों को प्यार भरा सलाम कहता हूँ और अल्लाह
1: सलाम
2: से दुआ
1: सर,
2: करता हूँ आपको सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
1: थैंक यू सर।
2: जी, सही है। टॉपिक पे तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमको उस पे पालन करना जरूरी है।
1: जी
2: हमको सेहत, पेट्रोल की बचत के साथ साथ हमारे सेहत का सोचना चाहिए, पेट्रोल डीजल के अलावा, ताकि हमको जो भी काम होते, आजकल मोटरसाइकिल और वाहन जो भी गाड़ियां जितनी भी है, उसको हमने अपनी शान समझ लिए,
1: जी
2: यानी जरा जरा बात पे उसको हम बाहर लेके जाते हैं, लेके जाते हैं, बच्चों के हाथों में देते हैं, बड़ों के हाथों में देते हैं, एकदम आदी हो गए हम उन चीजों के। तो हमको उनका आदी नहीं बनना है, उनका जब जब लॉन्ग ड्राइव पे जाना है या कोई इमरजेंसी काम है तो उसको उस वक्त पे इस्तेमाल करना चाहिए।
1: हाँ
2: और
1: हाँ
2: हमारी
1: सर,
2: सेहत को सही रखने के लिए पांव पैदल चलना चाहिए और साइकिलिंग, साइकिलों का इंतजाम घर में रखना चाहिए
1: बिल्कुल
2: कि कभी
1: सर
2: भी साइकिल से आना जाना करेंगे कुछ हल्के फुल्के कामों के लिए, तो
1: जी,
2: हमारी सेहत भी बेहतर रहेगी और हम इन सारे चीजों का बचत भी कर सकेंगे। फिजूल खर्चों खर्चों से हमको बचना चाहिए।
1: जी
2: और निधि जी, एक गाने की फरमाइश थी,
1: जी
2: प्लीज
1: सर,
2: आप
1: आप
2: सुन के
1: बताइए,
2: थोड़ा
1: अगर प्ले
2: कभी
1: कर
2: ये प्ले तो
1: सकेंगे
2: मिल
1: तो
2: जाए।
1: कर
2: हाँ,
1: देंगे
2: मिलता
1: सर।
2: वो है आपके, इसमें पहले
1: सर
2: भी प्ले हो चुका है,
1: हाँ
2: फिल्म
1: सर,
2: का नाम है कब्जा।
1: कब्जा,
2: मोहम्मद अजीज की आवाज में, ऐ मेरे दिल हरदम ये दुआ कर, या मेरे मालिक तू सबका भला कर।
1: ठीक है जी, मैं बिल्कुल ट्राई
2: भाई
1: करूंगी।
2: बहनों को
1: थैंक
2: सलाम
1: यू
2: है,
1: सो मच
2: मुमताज भाजी
1: सर।
2: को भी सलाम है मेरा, और आप भी खुश रहे, आबाद रहे, आपकी बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप,
1: थैंक यू
2: आपका
1: सर,
2: वेलकम है।
1: थैंक यू सो मच सर।

0: నేను ఎం శ్రీనివాస్, డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్, హైదరాబాద్. పిల్లల పరంగా మిస్సింగ్ చిల్డ్రన్స్ కానీ 0 to 18 ఇయర్స్ ఎటువంటి పిల్లలు మీకు కనపడినట్లయితే మీరు 1098కు కాల్ చేయండి. 24/7 అవైలబుల్ ఉంటుంది పిల్లల పరిరక్షణకై, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్.
1: वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप हैं हेलो रेनबो पे मेरे साथ आरजे निधि. आप सुन रहे हो रेनबो एफएम 101.9. तो जैसे हम बात कर रहे थे अबाउट रिड्यूसिंग फ्यूल कंजम्पशन और क्या अल्टरनेटिव्स ले रहे थे, हमारे कॉलर्स ने बताया था कि अननेसेसरी ट्रैवल कट करेंगे और कार पूलिंग करेंगे और जो भी पास वाले एरियाज़ है उसे हम चलते हुए या साइकिल पे जा सकते हैं, जिससे हमारा सेहत भी ठीक होगा और हमारा पेट्रोल का बचत भी होगा. तो आपके पास अगर ऐसे कोई और अल्टरनेटिव्स हो, या आप अपने पेट्रोल क्राइसिस में जो पेट्रोल बंक्स में लाइन था वैसे कुछ एक्सपीरियंस किया हो, तो ज़रूर बताना हमें हमारे नंबर्स पे 0402323-0030, 0402-9704715. हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक ये अच्छा सा गाना सुनेंगे.

0: Welcome back, dear listeners. That was Nazar Laaye from the movie Ranjana, and this is personally my favorite song. Abhi hamare saath hamare caller jud gaye hain, unse baat karte hain. Hello sir.
1: हेलो ओम शांति जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर।
1: मेरा नाम पोलिसेटी बहर बाबा जुबली से बात कर रहा हूँ मैडम
0: जी। सर आज आपका आज का टॉपिक सुने हो सर आप
1: जी? सुनते रहता मैडम, मैं अंधे आदमी, मैडम वॉचमैन ड्यूटी करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: फोन जेब में चलते रहता, मैं सुनते रहता, मेरा काम मैं करते रहता मैडम।
0: बहुत अच्छी बात है सर।
1: अभी मेरा को 3 बहू है मैडम।
0: ओके सर।
1: तीन बेटा है, 3 बहू है। परसों जनवरी 3 तारीख को इलेक्ट्रिकल स्कूटी 3 लिया मैडम, एक एक 45,000 मैडम।
0: अच्छा, इलेक्ट्रिक ही लिया आप?
1: इलेक्ट्रिकल स्कूटी लिया मैडम, तीनों की एक को लिए तो एक को गुस्सा आता मैडम, दोनों की गुस्सा आती, इसलिए तीनों के लिए मैडम।
0: अच्छी बात है सर।
1: एक एक 45,000 मैडम
0: जी सर।
1: एक मेरे को पोता पोतियों को 7 है मैडम, 4 पोतलों के 3 पोतियों के मैडम। इन्हें स्कूल के जाते मैडम, स्कूल को जाते 5 बच्चे साइकिल में जाते मैडम।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: दो बच्चे थोड़ा छोटे है, 6 साल का, 4 साल का, इन लोग स्कूल को बस में जाते मैडम।
0: ओके सर।
1: मैं आई तो किधर भी जाना बोले तो मैं चल के जाता हूँ मैडम, मेरा बीवी को हाथ पकड़ के दोनों चल के जाते हूँ मैडम।
0: इसका मतलब आपके घर में पेट्रोल का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है?
1: जी जी, मेरा बैठा लोग तीनों की बाइक है मैडम, तीनों की
0: जी।
1: क्या कहना, इन लोग ये इलेक्ट्रिकल बाइक को 70 फुल चार्जिंग करे तो 70 किलोमीटर आता
0: है, पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रिक बाइक है तो।
1: जी जी मैडम, जी मैडम,
0: जी
1: थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम,
0: थैंक यू सो मच सर।
1: पोल से थी मेहर बाबा जुबली
0: मैडम। जी जी। तो वैसे हमारे कॉलर बोल रहे थे कि उनके घर में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही है, वो तो अभी के सिचुएशन में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज उनको पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और आप भी अपने एक्सपीरियंसेस, आप जो अल्टरनेटिव्स यूज़ करते हो पेट्रोल के जगह पे, वो हमें बता सकते हैं 0402323003004022104029704715 पे। आप सुन रहे हो रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि।

0: हेलो रेनबो पे आप सबका स्वागत है डियर लिसनर्स। आप सुन रहे हो रेनबो एफएम 101.9 विथ मी योर आजे निधि। तो अभी हम हमारे कॉलर से बात कर लेंगे। हेलो सर,
1: हेलो
0: नमस्ते सर।
1: हेलो, गुड आफ्टरनून
0: गुड
1: मैडम।
0: आफ्टरनून सर।
1: के रमेश बात कर रहा हूँ। मैंने
0: जी
1: काफी
0: सर,
1: बहुत अच्छा दिया मैडम।
0: थैंक
1: ऑनलाइन
0: यू सर।
1: मैडम, तो
0: हाँ सर, ऑन एयर हो सर आप।
1: मैडम
0: जी
1: पेट्रोल का जी पेट्रोल डीजल जितना कम अपन इस्तेमाल करें तो अपना मनी बहुत अपने को बजट बच जाता है मेरा। क्यों
0: सही है सर, वो तो सही
1: बोले
0: है।
1: तो अपने पास पेट्रोल 80-90% बाहर से ही आता अपने को।
0: जी
1: 80 डॉलर 70 डॉलर ऐसे पेट्रोल अभी 105-110 डॉलर चल रहा है।
0: जी
1: इतना गवर्नमेंट जितना बर्दाश्त करता है, गवर्नमेंट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
0: सही है।
1: इसलिए साइकिल चलाना बहुत अच्छा है, हेल्थ को भी अच्छा है और पोल्यूशन भी नहीं रहता, पेट्रोल का भी जरूरत नहीं है।
0: जी
1: अच्छा आज और भी सुना, साइकिल भी आ गया है, मैं अपना इलेक्ट्रिक साइकिल भी आ गया।
0: जी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी आ
1: हाँ
0: गया है,
1: वैसा इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है मैडम।
0: बहुत अच्छा।
1: बाइक हमारा
0: इलेक्ट्रिक के तो
1: हमारे
0: कार्स भी आ गया ना
1: दोनों
0: सर
1: मतलब
0: अभी।
1: को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल दिला दिया मैडम मैंने।
0: जी अच्छा है, बहुत
1: एक बार
0: अच्छी
1: अगर
0: बात है।
1: एक यूनिट अगर जल गया तो, एक यूनिट का करंट जला तो 70 किलोमीटर सारा मैडम। कोई
0: वाह, वो तो बहुत अच्छी
1: अगर
0: बात है।
1: पेट्रोल डाले तो आपने कम से कम एक 3 लीटर का 30 लीटर 30 रुपए का

0: ट्रू ट्रू सर,
1: किसे 10 रुपए में हमारा काम किया।
0: हाँ सही है,
1: और जब बसा भी इतना मोड़ी इतना अच्छा काम किया अपना आंध्र प्रदेश को, कम से कम तेलंगाना को 1,000 बसा मिल जाए इलेक्ट्रिक के, तो
0: हाँ। और
1: कितना
0: उसमें
1: पैसा अपने
0: महिला
1: को
0: को
1: देखने को
0: फ्री भी
1: अच्छा लगा,
0: बस है
1: बहुत
0: ना।
1: अच्छा बोल के मेरे मन में।
0: जी,
1: हर एक आदमी सोच रहा बाहर गाड़ी पे नहीं जाना,
0: जी
1: साइकिल पे जाना, अगर एक आदमी दो आदमी कार में नहीं जाना, और धूप देखिए तो पेट्रोल बहुत बचत हो जाता मैडम।
0: सही
1: आप
0: है
1: सिग्नल
0: सर
1: के पास या इंजन ऑफ करके रख देना,
0: जी,
1: इन सिग्नल के वो जब भी अपने पेट्रोल सेफ हो जाता।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू
1: धन्यवाद
0: सर,
1: मैडम, आपका जय के रमेश उस्मानगंज।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो,
2: वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून निधि जी,
0: गुड
2: श्रीनिवास
0: आफ्टरनून
2: राव,
0: सर,
2: मलकपेट में।
0: आप थोड़ा रेडियो से दूर होके बात करेंगे
2: हाँ
0: सर।
2: हाँ ओके ओके मैं ओके
0: जी
2: मैं
0: सर,
2: तो
0: जी सर,
2: मैं टॉपिक क्या है मैडम आज का पेट्रोल?
0: आज का टॉपिक है सर फ्यूल के रिलेटेड है सर। अभी जैसे पेट्रोल कम करने के लिए बोले थे मोदी जी
2: ओके
0: ने,
2: मैं ओके मैं कम
0: तो
2: करने के लिए क्या करना
0: क्या
2: चाहिए? अच्छा
0: करते हो आप, और क्या आप पेट्रोल बंक के
2: तो
0: लाइंस में वेट करे हो पिछले कुछ हफ्ते
2: यस।
0: में? जी,
2: तो आपका टॉपिक कुछ अच्छा है, बिकॉज
0: थैंक यू सर।
2: हमारे वर्णाकरण पढ़ने ही चैनल कभी भी जी क्वेश्चंस आर बीन रिलेटेड टू दी ऑनगोइंग सिचुएशंस के ऊपर रहता है कभी भी।
0: जी,
2: वंस अगेन हैट्स ऑफ टू दी वर्णाकरण पढ़ने ही चैनल। तो
0: थैंक यू सर,
2: मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला जो है सो आप ये देख लो कि आपके घर से आपके ऑफिस की तरफ जो कि आप सेक्रेटरीट में काम कर रहे हैं,
0: जी
2: तो आपके सेक्रेटरीट को जाने वाले कितने लोग हैं?
0: जी
2: उसमें आप दोस्तों और चार लोगों को बना लेके फिर
0: जी
2: कार बात कर लीजिए, या ऑटो में बात कर लीजिए, 3 लोग हैं तो 3 लोग ऑटो बात कर लिए, या
0: जी
2: अकेले है तो रैपिडो आजकल मिल रहा है आप उस पर चले आ सकते हैं,
0: सही है
2: या
0: सर,
2: जो अब तीन समझो तीन है तो ऑटो कर लेना, तीनों एक मिनट के चले जाना। उसके
0: बिल्कुल
2: बाद
0: सही
2: पैसे
0: है
2: अपन
0: सर,
2: बात लेके पहले कर लेके उनसे बात करने के अगर चले गए तो इट विल वेल। चार
0: यस
2: लोग
0: सर,
2: है चार
0: यस
2: बात
0: सर,
2: कर लो, चारों लगा डिवाइड कर लेके अराउंड कर लेके दे दिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
0: बहुत ही
2: तो
0: अच्छा है,
2: वो
0: सबको
2: एक
0: पेट्रोल
2: तरीका
0: बचा
2: अपन
0: हो
2: पेट्रोल
0: जाएगा।
2: बचाने का एक
0: जी
2: तरीका है
0: जी
2: मेरे आइडिया में।
0: थैंक यू
2: या नहीं
0: सर,
2: तो आपके घर में अगर साइकिल है, बच्चों का साइकिल है, आप
0: तो वो
2: चला
0: लेके
2: सकते
0: चले जा सकते हैं, बिल्कुल सही है
2: या
0: सर।
2: रेडी टू बाइक चलाने की कोशिश कर सकते हैं तो बाइक
0: जी
2: पे
0: सर,
2: चले आ सकते हैं।
0: थैंक यू
2: ऐसा
0: सर,
2: थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े चीजें देख लेके आप अगर करिए तो पेट्रोल भी बच जाता है और गवर्नमेंट को भी अपन थोड़ा बहुत तो हेल्प करे वैसा
0: जी
2: होता है।
0: सर,
2: ये अपने को देख के अपन चार लोगों को अगर बोल दिए होते तो वो भी ऑटोमेटिकली दे ऑल्सो फॉलो द सेम थिंग सो दैट पेट्रोल कैन बी सेव्ड। और
0: यस
2: जिधर जिधर भी ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं उन लोगों को भी अपन बता सकते हैं कि भाई ऐसा करे तो बहुत ही अच्छा रहता है। अपने फ्रेंड्स को या दूसरे लोगों के इलाके में अगर शादी में गए कभी बात करे तो लोगों
0: सही है
2: से बात
0: सर,
2: कर चीज कर लिए तो अपने को भी वेल एंड गुड,
0: सही
2: सो
0: है
2: दैट
0: सर,
2: ऑटोमेटिकली द पेट्रोल विल बी सेव्ड इन ए
0: यस
2: वेरी
0: सर,
2: गुड मैनर मैम।
0: थैंक यू
2: सो
0: सर, थैंक यू सो मच सर,
2: थैंक यू मान जी, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू
2: आप
0: सर,
2: शो में आए।
0: थैंक यू
2: थैंक यू
0: सर,
2: वंस अगेन,
0: थैंक यू
2: थैंक यू
0: सर।
2: मैम।

0: निधि जी,
1: नमस्कार जी।
0: मैं वॉलेट प्रभाकर राव बात कर रहा हूँ
1: जी।
0: तो ये फ्यूल के बारे में ना?
1: जी, फ्यूल के बारे में है जी।
0: हाँ, फ्यूल को बारे में बोले तो बहुत जने बोल जा रहे
1: जी,
0: वो आचरण में नहीं कर रहे।
1: आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है सर।
0: हाँ, बहुत जने बोल जा रहे ऐसा करना बोल के
1: जी,
0: मगर उन्हें उन्हें नहीं चला रहा है ऐसा
1: जी।
0: तो हम लोग क्या करें बोलते, तो परसों हमारे कहीं इलेक्ट्रिक कार था
1: जी,
0: हैदराबाद से बेंगलुरु चार जने आए तलक
1: जी,
0: 1600 हुआ मैडम
1: जी
0: इलेक्ट्रिकल चार्ज रिचार्ज करे तो 1600 हुआ। वो ये अगर ट्रेन पे नहीं तो फ्लाइट पे नहीं तो दूसरे बसों पे आगे तो कितना कट होते चार जने को।
1: सही है सर, बिल्कुल सही है सर।
0: ये हम आचरण करके आए थे
1: जी,
0: अगर बहुत जने बोलते बड़े बड़े लोग आसन बड़े बड़े लोग से आना नीचे वाले जब करता
1: जी,
0: बड़े
1: जी
0: लोग ऐसा कर तो हम क्यों नहीं करना बोल के ऐसा।
1: सही है सर।
0: हाँ, ओके, राइट, थैंक यू, वॉलेट प्रभा कर रहा हूँ।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सर।

0: जी, वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू के वजह से हमें थोड़ा टाइम लगा, बट हम वापस आ गए हैं। हेलो।
1: हेलो।

हेलो डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं हेलो रेनबो, रेनबो एफएम 101.9 पर विथ मी योर आरजे निधि। तो अभी तक हम पेट्रोल कंजम्पशन को रिड्यूस करने के बारे में, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात कर रहे थे, जैसे अननेसेसरी ट्रैवल को कट करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को अडॉप्ट करना, जैसे मेट्रोज हो गए, फ्री बसेस हो गए वेमेन के लिए। तो हमें अभी फ्री बसेस भी है तेलंगाना में, और बसेस का तो बहुत ज़्यादा रेट भी है। जैसे हमें हर जगह जाने के लिए बसेस अवेलेबल है और मेट्रोज भी अवेलेबल है, और मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है कार पूलिंग। अगर हम वर्क प्लेस पर जा रहे हैं और हम एक ही एरिया में एक दो तीन लोग रहते हैं, तो साथ में जाना इज़ आई थिंक अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड पास में ग्रॉसरीज लेके आने के लिए या स्टेशनरी लेने के लिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए, जब हम पास जाते हैं तो टू व्हीलर के जगह हम चलते हुए भी जा सकते हैं, जिससे हमारा सेहत का बहुत अच्छा भी होगा।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Watch my biggest blockbusters online anytime, anywhere on erosnow.com.
2: Salman Khan ki comedies, romance aur action movies enjoy kijiye apne phone.
1: Watch my biggest blockbusters online anytime, anywhere on erosnow.com.
2: सलमान खान की कॉमेडीज, रोमांस और एक्शन मूवीज एंजॉय कीजिए अपने फोन या आईपैड से इसी वक्त साइन अप कीजिए और फ्री में देखिए सिर्फ इरोस नाउ पर।

हेलो डियर लिसनर्स, तो अभी हमारा समय ख़त्म हो चुका है. हम फिर से मिलेंगे अगली बार. आप सुन रहे हो रेनबो FM 101.9 विथ मी योर आरजे निधि.

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: FM Rainbow

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: మీరు వింటున్నారు FM రెయిన్బో తాజా ట్యూన్స్।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:30 हो चुके हैं और वक्त है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। सामाइन की खिदमत में हमारा पुरखलोस आदाब। सामाइन, उर्दू प्रोग्राम नैरंग की बज़्म सजाए हम हाजिर खिदमत हैं, और आज की इस बज़्म में आप समात करेंगे हरफ़ ताबिंदा। तहरीर व पेशकश होगी आयशा बुतूल की। बेदारी के कायनात सिलसिले के तहत आप तकरीर समात करेंगे बउनवान हिफ्ज़ान सेहत। पेशकश होगी इमे हाई की, और आप सुन सकेंगे नगमे सुरीले यानी गीत सुरीले गाते जाके तहत। और नैरंग की बज़्म के अख्तिताम पर आप समात करेंगी पयाम शब, जिसे पेश करेंगी नदीम अख्तर जैदी। तो सामिन, नैरंग की बज़्म में पेश किए जाने वाले प्रोग्राम्स की तफसील कुछ इस तरह से थी, और बिला ताखिर हम हरफ ताबिंदा को समाप्त करती हैं, जिसे पेश कर रही हैं आयशा बतूल। आइए सुने।
1: ज़िंदगी में मुश्किलात उन्हीं के आड़े आती हैं जो बाहिम्मत और मकसद हयात पर कायम रहते हैं, जो कि तूफान और आंधी का सामना करने से नहीं घबराते, बल्कि अपने कदम पहले से ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। मंजिल या फिर कामयाबी हमेशा ऐसे ही पुरअज़्म लोगों के कदम चूमती है, जिन्हें अपनी मंजिल को पाने और अपने ख्वाबों के शर्मिंदा ताबीर होने पर पूरा यकीन होता है, और ये यकीन ही हर काम के पूरा होने की बुनियाद होती है। वो कहते हैं ना कि जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो ख़दम ख़दम पर बहक गए। हर वो इंसान चाहे किसी भी शोबे या पेशे से ताल्लुक़ रखता हो, जिसने पहाड़ों की चोटियों को सर करने का इरादा कर लिया हो, वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल का सामना करता है। कामयाबी की बुलंदियों को छूने के लिए बहुत सी नाकामियों और उलझनों का सामना करना पड़ता है, ठोकरें खानी पड़ती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मंजिल के अक्सर बहुत करीब पहुँच कर हार मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतनी मेहनत बेकार की, शायद उनके हिस्से में नाकामी के सिवा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि अक्सर लोग अपने यकीन की ताकत को कमज़ोर कर देते हैं। कुछ रुकावटें इंसान को बहुत कुछ सिखाने के लिए आती हैं, उन्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, यकीन की ताकत को पुख्ता करने आती हैं। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। सारा खेल बस यकीन का होता है। हमारी ज़िंदगी में कुछ भी पाने खोने का इन्हिसार हमारे यकीन पर ही होता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। हमारे अज़्म नहीं टूटने चाहिए। बखौल आतिश थके जो पाऊँ तो चल सर के बल आतिश, थके जो पाऊँ तो चल सर के बल आतिश, गुले मुराद मंजिल में खार राह में है। इंसान की कामयाबी का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से वो दर्द को सहने और कामयाबी तक पहुँचने का फैसला करता है। आगे बढ़ने के लिए कुछ दरकार नहीं होता, बस अटल फैसला करने की ज़रूरत होती है और यकीन कामिल रखने की ज़रूरत होती है। अगर ये गांठ बांध लिया जाए कि जब तक मंजिल ना मिलेगी हार नहीं मानेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर कोई भी रुकावट कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकती। जब ये हौसला इंसान में बेदार हो जाता है तो फिर लाख तूफान क्यों ना उठे, कोई भी उसके अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकता। एक उम्दा इंसान को एक उम्दा कलम से तशबीह दी जा सकती है, इसलिए नहीं कि वो अच्छा लिखता है, बल्कि इसलिए कि यह बेहतरी की खातिर बार

0: बार तराशे जाने के अमल से गुजरता है। मुश्किलात में इंसान को हमेशा एक बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि जब ये कायनात मुस्तकिल नहीं तो यहाँ कुछ भी मुस्तकिल नहीं। अगर दर्द और तकलीफ़ें हैं तो वो वक्ती हैं, आर्जी और मुख्तसर वक्त के लिए है, लेकिन मुस्तकिल आपका यकीन है, आपका किरदार है, आपकी हिम्मत है। हम सभी को अपनी सलाहियतों पर यकीन रखना चाहिए और अपनी मंजिल हासिल करने के लिए जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए। ये यकीन की ताकत ही है जिसने इंसान को हवा में उड़ना सिखाया, बिना डूबे पानी की सतह पर सफ़र करना सिखाया। ये यकीन की ताकत ही है जो लोगों ने चांद पर कदम रखा और तरक्की की राहों पर आज गामजन हुए। वो सिर्फ कामिल यकीन, खुद एतमादी और अपनी सलाहियतों पर भरोसे की बदौलत आगे बढ़े। अगर हम किसी कामयाब इंसान की मिसाल ले लें तो हम ये देखेंगे कि उसने पहले पहल हमेशा अपनी मंजिल को अपनी ज़ात से आशना करवाया, फिर उसके हुसूल के लिए जान वार दी। आगे बढ़ते रहने की ख्वाहिश इंसान की फितरत में शामिल है। अगर आपको अपनी काबिलियत पर वाकई यकीन है तो आपको किसी की टांग खींच कर आगे बढ़ने की कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर कामयाब लोगों का मुताला किया जाए तो ये पता चलता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात और नाकामियों का बड़े हौसले के साथ सामना किया। कामयाब लोग कभी हिम्मत नहीं हारा करते, बल्कि वो उन चीज़ों का मुकाबला करने को तरजीह देते हैं जिनसे उन्हें खौफ आता है। वो नाहमवार रास्तों को हमवार बनाकर कामयाब मंजिल के कामयाब मुसाफिर बन जाते हैं। आज के हर्फ ताबिंदा का पैगाम यही है कि जो शख्स खुददार और दिलेर होता है, जो खुद पर यकीन रखता है, अपने मामलात और फैसलों में, अपने आमाल में पक्का होता है, तो ज़माना खुद उसके मिजाज के मुताबिक चलता है। इसीलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए और तब तक मेहनत करनी चाहिए, तब तक अपने आप पर यकीन रखना चाहिए जब तक आप जीत कर तारीख रकम नहीं करते।
1: सामिने किराम, अभी आप समाप्त कर रहे थे हर्फ ताबिंदा, जिसे पेश कर रही थी आयशा बतूल। और यकीनन जब मुसम्मम इरादे हों और यकीन आपका पक्का हो, पुख्ता हो, और मेहनत आप हद दर्जे की करते हैं, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो यही कुछ हर्फ ताबिंदा में आयशा बतूल बता रही थी कि जब यकीन होता है, कहते हैं कि घुड़सवार ही गिर कर फिर सवार होते हैं और शहसवार ही गिर कर कामयाबी हासिल करते हैं। जो गिरता है मैदान में वो एक नया सबक सीखता है और फिर नाकामी से कामयाबी की तरफ चल पड़ता है। तो ये था हर्फ ताबिंदा। और सामेन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, और वक्त हुआ है स्टोरी की घड़ी में रात के 9:48 और 22 सेकेंड्स। अब हर्फ ताबिंदा के बाद हम समाप्त करते हैं बेदारी कायनात सिलसिले के तहत तकरीर, जिसका उन्वान है हिफ्जान सेहत। और इस ज़माने में, मौजूदा ज़माने में, हमको हमारी सेहत का बे इंतहा ख्याल रखना है, न सिर्फ हमारा बल्कि हमारे ख़ानदान का, हमारी फैमिली का। तो हिफ्जान सेहत सुनते हैं हम जनाब एमए हाई से, आइए सुने।
2: अब बात करते हैं कंधे के दर्द की। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि कंधे के दर्द को सिर्फ पट्ठों का खिंचाव समझकर नज़रअंदाज न करें, ये जिगर के कैंसर की इब्तदाई अलामत भी हो सकती है। अगरचे कंधे में हल्का सा मुसलसल दर्द आम लग सकता है, मगर माहिरीन का कहना है कि ये बाज़ औक़ात कैंसर की एक छुपी हुई अलामत हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक दाएं कंधे में मुसलसल फर्जी या गैर वाज़े दर्द बाद सूरतों में जिगर के कैंसर की निशानदेही कर सकता है। हत्ता कि जब बाजू खुद बिल्कुल ठीक महसूस हो, जिगर का कैंसर जो पहले ज़्यादातर उम्र रसीदा अफराद में होता था, अब 30 और 40 साल की उम्र के अफराद में भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसने माहिरीन को तश्वीश में मुब्तला कर दिया है। अंदाज़ा है कि 2050 तक इस बीमारी के केसेस दुगने हो सकते हैं, जिससे यह सेहत का एक बड़ा आलमी मसला बन सकता है। यह बीमारी पहले ही बरतानिया में तेज़ी से बढ़ रही है, मगर इसकी अलामत अक्सर मुबहम होती हैं और आसानी से नज़रअंदाज कर दी जाती है। बरतानिया में हर साल तकरीबन 6,000 अफराद में इसकी तशखीस होती है, जबकि गुज़िश्ता दहाई में इसकी शरह में 40% से ज़ायद इजाफा हुआ है چیک ریپبلک کے دار

0: की वजह से बहुत से इंसान हालत इस्तरार में आ जाते हैं, सर हमेशा चकराने लगता है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। इस नजात ऐन मुमकिन है और इस तरह है कि इंसान सबसे पहले हर दिन अलग सुबह नींद से बेदार होते ही ये सोचे कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, फिर पूरी फुर्ती के साथ उठे और बशाशत के साथ अपने ज़िम्मे जो काम है इसको अंजाम दे। यकीनन इस तरह के अमल की आदत से तकरीबन बीमारी ख़त्म हो जाएगी और रही सही बीमारी इलाज व मालजे से दूर हो सकती है। जिन बीमारियों के इलाज गैर दरियाफ्त शुदा हैं, ऐसे मरीज़ भी कुछ हौसले से काम लेकर ख़ुद को दिमागी दबाव से बचा सकते हैं। बीमारी और सेहत, मर्ज़ और शिफा और मौत व हयात, ये सब परवरदिगार आलम के कब्ज़े कुदरत में है। इलाज व मालजा तो अस्बाब की शक्लें हैं, लेकिन हयात, सेहत, शिफा का मिलना तो मुमिन जानिब अल्लाह है। ये बात भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि मौत बरहक है और वो वक्त मुकर्रर पर ऐसे आएगी कि एक लम्हा ना जल्दी आए ना एक लम्हा बाद। जब यह तय है तो फिर क्या सोचना है, खुश रहकर भी मरना है, रंज व अलम में भी घुटकर भी मरना है, लेकिन खुश रहकर मरना ये घुटकर मरने से तो बेहतर है। इंसान थोड़ी सी समझ बूझ से काम ले तो ये फिज़ा कायम कर सकता है।
1: समय कराम, अभी आप समाप्त कर रहे थे हिफ्जान सेहत तकरीर बेदारी कायनात सिलसिले के तहत। पेश कर रहे थे एमए हाई। यकीनन चूंकि मौजूदा दौर में हर कोई इतना मसरूफ है, काम का बोझ ही इतना है या ख़ुद हमने बढ़ा लिया है कि कहाँ दर्द हो रहा है और कब डॉक्टर के पास जाना है, कब तबीब की हमें याद आती है, कुछ नहीं रहा दिमाग में, बस चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, उम्मीद पर हिम्मत करते हुए कि मंजिल ज़रूर पा लेंगे। तो यही ज़रूर कहा जा रहा था कि बेदारी कायनात इस तकरीर में कि सेहत का ख़ास ख्याल रखें, दर्द वगैरह को नज़रअंदाज ख़तः ना करें। सामईन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग और स्टूडियो की घड़ी भी इस वक्त वक्त हुआ है रात के 9:52 और 42 सेकेंड। अब वक्त है गीत सुरीले गाते जा के तहत फिल्मी नगमे सुनने का। तो मैंने चुना है उनवान फूल, और फूल इसके तहत कुछ नगमे प्ले किए जाएंगे। चूंकि सामईन, फूल कुदरती हुस्न का शाहकार है, कायनात में फैले इन फूलों के रंग जिंदगी को भी रंगों से भर देते हैं। फूल, दरख्त, पौधे इंसान के लिए ख़ास अहमियत रखते हैं। तबीयत की खुशगवारी में फूलों और पौधों का अहम किरदार होता है। इन्हें देखते ही तबीयत तरोताज़ा और मूड एकदम बेहतर हो जाता है, और आपस में मिले लोग गिले शिकवों को दूर कर देते हैं और ज़िंदगी में प्यार को भरने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ रंगों के फूल खिले माहौल और इसकी खूबसूरती में भी इजाफा कर देते हैं। लिहाजा बागात की खूबसूरती के लिए फूलों के साथ मुख्तलिफ दरख्तों और पौधों को लगाया जाता है ताकि सब्ज़ी में खिले रंग बिरंगे फूल अपनी खूबसूरती को नुमाया कर सकें।

में फूलों को लगाया जाता है, सजाया जाता है, बागबानी की जाती है। दुनिया भर में फूलों, दरख्तों और बेलों के जरिए ऐसे शाहकार बनाए गए हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं। अमेरिका और अफ्रीका के मुख्तलिफ शहरों में फूलों और दरख्तों के जरिए बादशाहों, मुख्तदर हस्तियों, शायरों और तारीखी इमारत के मुजस्मे बनाए गए हैं जो कि इंतहाई दीदा जेब हैं। यकीनन इन फरपारों को बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। बागबानी एक कदीम और अच्छा मशगला है जिसे लोग सदियों से अपनाए हुए हैं। इसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, यानी बागबानी मुकम्मल एक फन या आर्ट है। और सामाइन, कभी आपने कहा है अपने बागीचे में मौजूद उन फूलों को कि भाई वो हंस दें तो वो हंस पड़े? जी, यहाँ जो नगमा मैं प्ले करने जा रही हूँ वो कुछ ऐसा ही है कि कोई कह रहा है फूलों से,

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर। सामाई आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग, और बज्म सजी है गीत सुरीले गाते जा, और उन्वान मैंने लिया है फूल। और फूलों का राजा यकीनन गुलाब को कहा जाता है, और जब गुलाब की बात हो तो यकीनन गुलाब तो मोहब्बत की निशानी है, अलामत है। और जब इजहार होता है पहली मोहब्बत का, तो फिर गुलाब के फूल के ज़रिए ही अपने जज्बात का इजहार किया जाता है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर सामाईर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, और बज्म सजी है गीत सुरीले गाते जा, और मैंने उन्वान लिया है फूल का। यकीनन बागबानी मुकम्मल एक फन या आर्ट मानी जाती है, कुछ लोग इसे शौकिया अपनाए हुए हैं और इस पर मुख्तलिफ ममालिक में रिसर्च होती रहती है और नए से नए शाहकार सामने आते रहते हैं। चीनी साइंसदानों के एक गिरोह ने पौधों पर रिसर्च करके एक पौधा बनाया है जिसका नाम चढ़ रखा। इसकी शक्ल और पत्तियां बाकी तमाम फूलों से मुख्तलिफ हैं। ये फूल नहायत मुख्तलिफ नौयत का हामिल है। इसकी कीमत 2 लाख अमेरिकी डॉलर रखी गई है। इसी तरह मुख्तलिफ नौयत के बेशुमार फूल तैयार करके उनकी कीमत लाखों में रखी जाती है। तो कई ऐसे फूल हैं जिनकी कीमतें हजारों तक है, और बेहतर से बेहतर महंगे तरीन फूलों में इनका शुमार किया जाता है। तो सामिन, फूल यकीनन खुशबू महकाते हैं, चाहे वो दुख हो या सुख हो, फूल साथ निभाते हैं। और जब घर का मामला आता है और भाई के सामने उसकी जो बहन होती है वो यकीनन फूलों की तरह ही नाजुक होती है और खूबसूरत होती है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। समय आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग और बसम सची है गीत सुरीले गाते जा। उन्वान हमने लिया है फिल्मी नगमों का फूल। और फूल, अगर मैं फिल्म सूरज का नगमा जिसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया प्लेना करूं तो शायद ये जो प्रोग्राम है उसमें कुछ कमी सी रह जाएगी। तो महबूब के आने पर ये नगमा

सामाइन हम बात कर रहे हैं फूलों की, रंग बिरंगे फूलों की, जिससे हमारी ज़िंदगी भी रंगीन हो जाती है। एक फूल जिसका नाम फ्लावर कडुपुल है, ये भी महंगे तरीन फूलों में शुमार किया जाता है। इस फूल की सबसे अहम खसूसियत ये है कि ये फूल आधी रात को महकता है और फिर मुरझा जाता है। ये श्रीलंका में पाया जाता है। ट्यूलिप को भी 17वीं सदी से सदी में सबसे महंगा फूल तसव्वुर किया जाता था। चंद मज़ीद महंगे फूलों में सैफ्रॉन, केना, चेरी ब्लॉसम, लैला ऑफ द वेल, बल्कि ऐसे कई फूल हैं जो काफ़ी महंगे तरीन फूल हैं और उनमें ये शामिल हैं। दुनिया भर के लोग बड़े शौक के साथ इन महंगे फूलों के नशोनुमा करके इसे मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पर भी फ़ायदा उठाते हैं। इस कारोबार के लिए फूलों की नशोनुमा के लिए मुनासिब जगह का इंतज़ाम होना बेहद ज़रूरी है। जहां धूप और रोशनी का मुनासिब गुजर होता हो, वहां फूलों की सही नशोनुमा हो सकती है।

सामाइन, जहाँ मोहब्बत के इजहार के लिए गुलाब का फूल भेजा जाता है, तो कहीं रजनीगंधा का भी इस्तेमाल किया जाता है।

पर। इस वक्त स्टूडियो घड़ी में रात के 10:35 और 45 सेकेंड हो रहे हैं और बसन सजी है गीत सुरीले गाते जा। उन्वान हमने लिया है फूल। फूलों को जैसा कि गुलाब, चमेली, ट्यूलिप्स वगैरह को शादी ब्याह और मुख्तलिफ तकरीबात पर सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप सभी को पता है यकीनन परफ्यूम फूलों से अर्क निकालने के बाद मुख्तलिफ किस्म के परफ्यूम और अतरियात वगैरह तैयार किए जाते हैं जो कि नहायत कीमती होते हैं। ताज़ा गुलाब का बनाया हुआ मरकब मुतअद्दिद बीमारियों को दूर करने के लिए दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस फूल को सूंघने से दिल की धड़कन मुनज़्ज़िम और दिमाग बेदार हो जाता है। इसके अलावा इससे परफ्यूम और अतर भी तैयार किए जाते हैं। तो गुलाब के फूल की बड़ी खसूसियत रही है जिसको सूंघने से न सिर्फ दिल की धड़कन तेज़ होती है बल्कि अपने एक लय में चल पड़ती है, तो वहीं दिमाग भी हमारा बेदार हो जाता है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। समय आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग और बज़्म सजी है गीत सुरीले गाते जा। समय जिस जगह चमेली का फूल लगा हो वो इलाका इसकी खुशबू से महक उठता है। ये फूल रात के वक्त अपनी ताजगी का जादू जगाता है। चमेली के पत्तों को सुखा कर चाय भी बनाई जाती है, इस्तेमाल की जाती है चाय भी। इस चाय को चाइना ने तैयार किया था और अब दुनिया के मुतादित ममालिक में इसकी चाय बनाई जाती है। लोग चमेली की चाय पीकर सुकून महसूस करते हैं। चमेली के फूलों से तेल भी निकाला जाता है जो बहुत ही खुशबूदार होता है, जो कि लोग आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, क्योंकि चमेली के फूल से थोड़ा सा ही तेल जो निकल पाता है।

सामेन गीत सुरीले गाते जाए, इसमें आप सुन रहे थे फूलों पर कुछ नगमे। अब ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। सामेन नैरंग की बज़्म में हम आखिर इख्तिताम पर सुनते हैं पयाम-ए-शब, जिसे पेश कर रही हैं नदीम अख्तर ज़ैदी। आइए सुनें।

0: श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। ENTA and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi said

रंगे महफिल में हर कोई मुस्कुराता मिला, कोई अपनी जीत पर कोई हालात छुपाता मिला। अजीब दौर है दोस्तों, चेहरे के पीछे हर शख्स थोड़ा कुछ न कुछ छुपाता मिला।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। आने वाले दो गीतों के बारे में आपको बता दूं, गीता दत्त की आवाज में अगला गीत आप सुनेंगे मदन मोहन का संगीत है, फिल्म का नाम है भाई भाई, और इसके बाद होगा फिल्म पेइंग गेस्ट से गीत, आवाज है किशोर कुमार की और संगीत एसडी बर्मन का है, गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। तो इन दो गीतों का आनंद लीजिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर, और वक्त हो गया है 11:20 और 9 सेकेंड।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता जी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम है दिलेक मंदिर और संगीत है शंकर जय किशन का। वक्त हो गया है 11:35 और 8 सेकंड। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत, आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड है 100.1 MHz पर।

मजरू सुल्तानपुरी की लिखी हुई कव्वाली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी हुई लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में आपने सुनी मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, और आप सुन रहे हैं

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

जी हाँ दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत, और आज आपके साथ है अर्पना। अगले जो दो गीत आने वाले हैं वो दोनों गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे हैं और दोनों का संगीत आरडी बर्मन का है। पहला गीत होगा किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है अलग अलग। और इसके बाद जो दूसरा गीत आएगा वो है शब्बीर कुमार की आवाज में और फिल्म का नाम है बेताब। तो इन दो गीतों का आप आनंद लीजिए। ये दोनों गीत जैसे मैंने बताया आनंद बख्शी के लिखे हुए हैं और संगीत आरडी बर्मन साहब का है।

11 बजकर 55 मिनट और 50 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत मेरे मनमीत का आज का ये आखिरी गीत होगा फिल्म नसीब से। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ संगीत गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आवाज है लता मंगेशकर की। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। हंसते मुस्कुराते रहिएगा और आकाशवाणी के संग रहिएगा हमेशा। अर्पणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और गीत के बाद समाचार एफएम गोल्ड पर जरूर सुनिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जु राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में बेहद उत्साह है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा।

0: बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले की आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय के में दायर याचिका को में से एक में से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और तीन एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की भी कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने अंतिम ओवर में जीत हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic Summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Meanwhile, Prime Minister Modi has arrived in Italy's capital Rome on the 5th and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden and Netherlands and UAE. Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तीन देवियां, आवाज है किशोर कुमार की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती।

अपने होने का ही अक्सर सवाल किए जाते हैं, हम ही राहों को तुम्हारी आसान किए जाते हैं। अपने होने का भी अक्सर सवाल किए जाते हैं, हम ही राहों को तुम्हारी आसान किए जाते हैं। कौन समझेगा, कौन समझेगा यहाँ सच की तह तक जाकर, हम तो बस बीच के किरदार किए जाते हैं। दिल में तूफान है, आंखों में ठहरती सी नमी, दिल में तूफान है, आंखों में ठहरती सी नमी, और लफ्जों से मगर बस मलाल किए जाते हैं, और लफ्जों से मगर बस मलाल किए जाते हैं। अपने होने का भी अक्सर सवाल किए जाते हैं, हम ही राहों को तुम्हारी आसान किए जाते हैं। अगला गीत फिल्म का नाम है जिद्दी, आवाज है लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार, आवाज है मोहम्मद रफी की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आज निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। कहते हैं प्रेम को लिखना, प्रेम को कहना और प्रेम को बयां करना इस दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम। प्रेम को लेकर किसी ने कहा कि प्रेम कोई शब्द नहीं जिसे लिख पाओगे, प्रेम कोई अर्थ नहीं जिसे समझ पाओगे, ये तो धड़कनों में बहता स्पंदन का सफर है, बह गए तो बस बहते चले जाओगे। और प्रेम में परिपक्वता तभी आती है जब हम ये स्वीकार कर लें कि हर संबंध पर अधिकार नहीं होता, प्रेम की स्वतंत्र वृत्ति ही उसकी खूबी है। और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी

में समाचार, हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। यहाँ छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है बोल राधा बोल, आवाज है सुरेश वाडेकर और साधना सरगम की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय द्वारा यह आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान मामले में जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के

0: 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। लोकसभा से कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा और डॉक्टर निशिकांत दुबे को समिति में शामिल किया गया है। वहीं राज्यसभा से विनोद श्रीधर तावरे, सुजीत कुमार और उज्जवल देव राव निकम समिति के सदस्य हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रख्यात मणिपुरी नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में ये सम्मान प्रदान करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 225 रन बनाए। आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by RS Raghu. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital, Oslo, yesterday. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Minister of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Meanwhile, Prime Minister Modi has arrived in Italy's capital Rome on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. United Union Education Minister Dharmendra Pradhan yesterday chaired a high-level meeting in New Delhi to assess preparations for the forthcoming NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical education to be held on 21st of next month. Mr. Pradhan directed that all gaps identified in the earlier examination process must be comprehensively addressed and eliminated. The minister emphasized that re-examination must be conducted in a secure, seamless and foolproof manner under stringent security protocols. During the meeting, directions were issued to hold coordination meetings with district magistrates and superintendents of police across states to ensure robust monitoring and effective implementation of examination arrangements. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah said Bastar Division of Chhattisgarh will emerge as the country's most developed tribal region within the next 5 years. Mr. Shah was addressing the media in Jagdalpur. He said that after making Bastar free from Naxalism, the centre and the

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

किताबे दिल में ना कोई गुलाब रखे, मेरी किताबे दिल में ना कोई गुलाब रखे, बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे। रिश्तों की रोशनी को ना बाजार बना दे, रिश्तों की रोशनी को ना बाजार बना दे, हर लफ्ज अपने अर्थ का सच्चा हिसाब रखे। मिट्टी की सादगी में जो खुशबू दुआ सी है, मिट्टी की सादगी में जो खुशबू दुआ सी है, वही हमारी चाहत का ऊंचा मकाम रखे, वही हमारी चाहत का ऊंचा मकाम रखे। कागज पे जो लिखा है वो अर्पण सा शुद्ध हो, कागज पे जो लिखा है वो अर्पण सा शुद्ध हो, हर पंक्ति अपने प्रेम का निर्मल खिताब रखे, हर पंक्ति अपने प्रेम का निर्मल खिताब रखे। मेरी किताब दिल में ना कोई गुलाब रखे, बस नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे, और नाम तेरा और कोई पाक जवाब रखे। अगला गीत, फिल्म का नाम है संगम, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। गीत सुहाने की इस महफिल में जो अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। आवाज है लता मंगेशकर की।

रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी। जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी। वक्त नदियों को उछाले कि उड़ाए पर्वत, वक्त नदियों को उछाले कि उड़ाए पर्वत, उम्र का काम है गुजरना गुजर जाएगी, उम्र का काम है गुजरना गुजर जाएगी। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, तारीख बदल जाएगी। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है हमराज, आवाज है महेंद्र कपूर की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे FM गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी और आवाज है सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जो राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी परीक्षा की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 66 श्रेणियों की नई सूची अधिसूचित की है। इसके साथ ही ओबीसी ए के लिए 10% और ओबीसी बी के लिए 7% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान,

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कोई शाम तुम मुझे मुकम्मल कर दो, कोई शाम तुम मुझे मुकम्मल कर दो, मैं डूबते सूरज के बाद अपने चांद को देख लूं, मैं डूबते सूरज के बाद अपने चांद को देख लूं। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बन गया है एक पुल सा तुम्हारे और मेरे मन के बीच, बन गया है एक पुल सा तुम्हारे और मेरे मन के बीच, कुछ मेरी कुछ तुम्हारी, कुछ कही कुछ अनकही, यादों का पुल जो पाट देता है हमारे बीच की गहरी अनंत खाई जैसी दूरियों को। उस पुल के किनारे उग आई हैं मेरी बातें, उस पुल के किनारे उग आई हैं हमारी बातें, फूलों की तरह जिनकी खुशबुओं से भर गई हैं पुल की दरारें, खुशबुओं की तरह से खुशबुओं से भर गई हैं पुल की दरारें। ये पुल एक आश्वासन है कि तुम मेरे पास हो, क्योंकि यादों के पुल टूटा नहीं करते, यादों के पुल टूटा नहीं करते। अगला गीत, फिल्म का नाम है भीगी पलकें, आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। रात सुरमई में अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है धर्म काटा, आवाज है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

कभी जो दिल में था अब वो ख्याल नहीं आता, कभी जो दिल में था अब वो ख्याल नहीं आता, तुम्हारे बाद कोई भी सवाल नहीं आता। वो नाम जो धड़कनों में उतर गया था चुपके, अजीब है कि अब उसका ख्याल नहीं आता। मैं अपने ही साए से बात करती रहती हूँ, मैं अपने ही साए से बात करती रहती हूँ, मगर जवाब में भी कोई जवाब नहीं आता, मगर जवाब में भी कोई जवाब नहीं आता। कभी जो दिल में था वो ख्याल नहीं आता, तुम्हारे बाद कोई भी सवाल नहीं आता। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

और अब वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहेगी अनुमति। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, फिल्म का नाम है लोफर, आवाज है आशा भोसले की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूती प्रदान करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार जुराव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपने ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। और खेलों में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 221 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते 25 रन बनाए। आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से

मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। बहुत से गीत और उनकी पंक्तियाँ दिल में जाके बस जाती हैं। ये गीत आपने सुना प्रोफेसर फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत। मोहब्बत की तड़प ये कह रही है।

0: सच्ची मोहब्बत में वाकई ही असर होता है जो एक दूसरे की बात दोनों के दिलों तक पहुंच जाती है। खैर आपको बता दूं कि ये गीत राजकुमार फिल्म से था, हसरत जयपुरी के बोल थे और संगीत शंकर जयकिशन का। अगला गीत आप सुनेंगे आराधना फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और धुन बनाई है एसडी बर्मन ने।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: कैन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गलियों के निखार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और युगल गीत आप सुन रहे हैं हम रही कार्यक्रम के अंतर्गत। अगला गीत तेरे मेरे सपने फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। नीरज के ने इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है SD बर्मन ने।

दोस्तों, कुछ गीत तो वाक्य में ही हमारे मन को मोह लेने वाले होते हैं। जी चाहता है जब भी सुने साथ साथ गुनगुनाते भी रहें।

आधी फिल्म से ही अभी आपने गीत सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। गुलजार की शब्द रचना थी और संगीत से संवारा आरडी बर्मन ने। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ मधुमती फिल्म से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

हम राही कार्यक्रम चल रहा है और आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और गीतों को सुनवाने के लिए मैं हूं आपकी दोस्त वंदना।

हरियाली और रास्ता है। इस फिल्म से आपने अभी गीत सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में। हसरत जयपुरी ने शब्दों में पिरोया था और संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे नया दौर फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ है, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना है और ओ पी नैयर का संगीत।

आपके पीछा तो वही करेगा ना जो आपका अपना होगा। और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ अनाड़ी फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। शैलेंद्र की बोल है, शंकर जयकिशन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की यह 2 दिवसीय यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरार्जुन राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता दूर करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय आर्जिकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त समिति का गठन किया है। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 9 सदस्य शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने कहा है कि भारत अगले सप्ताह क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इस समूह में भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब

अरुणिमा, कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं आपके साथ रहूंगी 4:59 तक गीतों के साथ। स्वीकार कीजिए फिर से मेरा नमस्कार।

और यहाँ तो गाने वाले का भी जवाब नहीं है। पेइंग गेस्ट इस फिल्म से गीत था किशोर कुमार का गाया हुआ, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना थी और सचिन देवबर्मन का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ चिराग फिल्म से, मोहम्मद रफी का गाया हुआ है और मजरूह सुल्तानपुरी ने शब्दों में पिरोया धुन बनाई है, मदन मोहन।

0: फूल बने अंगारे। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना थी कल्याण जी, आनंद जी का संगीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।

वाकई में ही दोस्तों, हम अच्छे रास्ते पर जा रहे हों तब भी लोग कुछ ना कुछ कह देते हैं। अगर बुरा रास्ता मिल जाए तब तो मालूम ही है कि लोग कुछ कहेंगे। इसलिए जहां आपको लगे, आपका दिल माने कि आप सही हैं, वही काम कीजिए। ये गीत था अमर प्रेम फिल्म से, किशोर कुमार का गाया हुआ, आनंद बख्शी की रचना थी और आरडी बर्मन का संगीत। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी का गीत है और रोशन का

अब अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ गीता दत्त की आवाज में, भाई भाई फिल्म से। राजेंद्र कुमार ने गीत को लिखा है, धुन तैयार की है मदन मोहन ने। दोस्तों बहुत गीत ऐसे लगते हैं बहुत समय बाद सुन रहे हैं, लेकिन आज भी दिलो दिमाग में तरोताज़ा रहते हैं।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में आप गीत सुन रहे हैं अपने दोस्त वंदना चुक के साथ।

दोस्तों, दोस्ती में ही ये उम्मीद की जाती है कि हमारा साथ वक्त पर कोई ज़रूर देगा। बहुत कम लोगों में से आप किसी पर अपना हक जता सकते हैं, वरना दुनिया में तो बहुत लोग हैं। जुर्म फिल्म से ये गीत था, साधना सरगम और कुमार सानू का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ गुमराह फिल्म से, आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी की रचना है और रवि का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था मेरे महबूब फिल्म से। शकील बदायूनी की रचना थी, नौशाद का संगीत। कार्यक्रम के आखिर में आप सुनेंगे हम दोनों फिल्म से ये गीत, मोहम्मद रफी और साहिर लुधियानवी की शब्द रचना है और जयदेव का संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा की आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय बेहद उत्साहित है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इस वर्ष मार्च तक भारत ने अपनी ब्रांड गेज रेल नेटवर्क का लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे प्रमुख रेल नेटवर्क वाले देशों से आगे निकल गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रूपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दी जाएगी। ये योजना 1 जून 2026 से लागू होगी। 25 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं इसका लाभ उठा सकेंगी। लक्ष्मी भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को स्वतः इसमें शामिल किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि जिले को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 मई से भारत की 4 दिन की यात्रा पर आएंगे। उनकी ये पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण लू की चेतावनी जारी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जब इंसान मन से धैर्य खो देता है, हार जाता है, तो बस एक ईश्वर के अलावा उसे कोई और रास्ता नहीं नजर आता।

0: रफू चक्कर इस फिल्म से ये रचना थी, गुलशन बावरा का गीत था और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। दोस्तों, भोर का समय वाक्य में ही आपको शांति और ऊर्जा देता है, इसलिए उसका सुमिरन करके ही बिताना चाहिए, क्योंकि बाकी सारा दिन तो सांसारिक कार्यों में बीत जाता है।
1: जब राम नाम ले ले हर काम